0: 88
1: आवाज सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

साहब ससुरी खां पुनू ॾेर वठी विया हाणे सिर तूं चवनि त पंहिंजो भाउ वठी विया तुंहिंजो छा खणी विया माठि करे सबर करे वेही रह।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सप्लाई निज़ाम जी तोसी वारा मनसूबा भी जारी रहंदा। मलीर एक्सप्रेस वे ते नवा इंटरचेंज ऐं राबता रोड ठाहिण लाइ वई। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह बजट तकरीर कंदे चयो त सिंध हुकूमत कराची जे मेगा मनसूबनि ते ख़ासि ध्यान ॾे। सिंध जे नए माली साल जी बजट में सब्सिडीज लाइ 133 रहाई 54 अरब रुपया, कर्ज़न ऐं व्याज जी वापसी लाइ 54 रहाई 25 अरब रुपया, ज़िले तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ 44 अरब ऐं 384 रहाई 825 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। वफ़ाक़ी तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ 76 रहाई 582 अरब, सिंध स्टेबल डेवलपमेंट गर्ल्स मेगा रेथा लाइ 29 अरब रुपया रखिया विया। कणक जी ख़रीदारी लाइ 80 अरब ऐं सिंध वीट ग्रोवर सपोर्ट प्रोग्राम लाइ 43 अरब रुपया मुख़्तस करण जी तजवीज़।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज

सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रोबीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: Consecutive budgets. Sir, I'm proud to announce that the Sindh government is going to undertake the KT-Bandar Maritime and Economic Corridor. I'm pleased to announce that the government of Sindh has initiated the process for establishing the Sindh International Financial Center as a world-class platform for investment, finance, innovation and dispute resolution.
2: हाले साल लाइ 3,562 अरब रुपयनि जी बजट पेश 36 अरब खां वधीक जो खसारो हूंदो। मुलाज़मनि जी पघारुनि ऐं पेंशन में 7% वाध जो ऐलान। औरतुनि जो घटि में घटि अजूरो 40,000 मां 43,000 रुपया कयो वियो। 2,75,000 खानदाननि खे मुफ़्त होम सोलर सिस्टम ॾियण वारी स्कीम बि मुतारिफ़। सालियानी तरक़ियाती बजट में कटौती। तरक़ियाती बजट 1,018 अरब मां घटाए 980 अरब रुपया मुख़्तस कई वई। वफ़ाक सां तय थियल मुआदे तहत तरक़ियाती प्रोग्राम 575 अरब रुपयनि मां घटाए 400 अरब रुपया कयो वियो। गैर तरक़ियाती बजट में 418 अरब रुपयनि जी वाध। कराचीअ में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर क़ाइम करण जो बि ऐलान। केटी बंदर खे आलमी बहरी लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल ऐं तवानाई मर्कज़ बणाइण जो अज़म। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त को बि नओं टैक्स शामिल नाहे। NFC में सूबे जे हक़नि ते को बि ठाह नाहे कयो।
3: आमदनी ते 8% सुपर टैक्स लागू। प्रॉपर्टी डेवलपर्स ऐं प्रोमोटर्स ते फीस

0: 8,800 रुपया इंश्योरेंस एजेंट्स दे 10 सैकड़ों तो टैक्स लागू वे वजीर सिंध फाइनेंस बिल सिंध असेंबली में पेश कर सको री इंश्योरेंस सर्विसेज अदावती सर्विसेज इंश्योरेंस एजेंट्स ए ब्रोकर्स से टैक्स लागू लीगल सर्विसेज टैक्स कंसल्टेंट्स रिपेयर सर्विसेज ब्यूटी ए फिजिकल सर्विसेज टैक्स के दायरे का बाहर
1: शोबे वी अरब सेहत लाइ 393 अरब रुपया रखण की तजवीज़ अमुन अमान जेलन ए पुलिसिंग लाइ 216.5537 अरब कानून ए पार्लियामानी मामलन लाइ 27.5656 अरब ज़रात लाइ 38.2 अरब लाइव स्टॉक ए फिशरीज लाइ 11.6 अरब रुपया रखा वया आपाशी शोबे लाइ 41.1 अरब मकानी खाते लाइ 201.39 अरब सुद समा खाते लाइ 10.85 अरब रुपया मुख्तस स्कूल एजुकेशन की प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी ए हायर सेकेंडरी लाइ 446.9958 अरब रुपया मुख्तस कॉलेज एजुकेशन लाइ 41.214 अरब ए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लाइ 8.18 अरब रुपया रखा वया
0: सिंध के मुख्तलिफ खातन में 864 नयू असामियों पैदा करने ऐलान बोर्ड मुतासर करने की बीहर तामीर लाइ 5.5 अरब पुठते पयल तबकन की जिंदगी बेहतर बनाने लाइ 13.5 अरब रखने की तजवीज बेनजीर हारी कार्ड लाइ 2.5 अरब सिंध पीपल्स सपोर्ट प्रोग्राम ए पीपल्स हाउसिंग स्कीम लाइ 2.5 अरब रुपया मुख्तस
1: NICVD लाइ 12 अरब SICVD लाइ 14 अरब TB कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 93 करोड़ एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 37 करोड़ PPHI लाइ 24 अरब API प्रोग्राम लाइ 24 अरब इंडस अस्पताल लाइ 8 अरब किडनी सेंटर कराची लाइ 30 करोड़ रुपया मुख्तस हसन सलेमान मेमोरियल अस्पताल लाइ 2 अरब 14 करोड़ रुपया रखा वया प्राइम हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी बेरिया टाउन लाइ 20 करोड़ चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन लाइ 3.5 अरब रुपया मुख्तस सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथोलॉजी लाइ 1 अरब रखने की तजवीज शामिल
0: सिंध के बजट में सूबाई राजधानी कराची के तरक्याती बजट लाइ वडी रकम मुख्तस मजमू तौर शहर की 816 मनसूबन लाइ 664.5 अरब रुपया मनसूबन लाइ 1 अरब रुपया रखा वया 178 जारी मनसूबन लाइ 500 मिलियन मुख्तस एयरपोर्ट का स्टार गेट ताई 9 फ्लाईओवर ठहंदो मलीर हाल्ट का शाहराह फैसल ताई राइट टर्न अंडर पास जो मनसूबो भी बजट में शामिल रेड लाइन VRT लाइ 13.5 अरब ए येलो लाइन लाइ 3.5 अरब रुपया मुख्तस गुजर नाले स्टोरम वाटर ड्रेन ए सर्विस रोडन लाइ 80 रुपयन जा मनसूबा लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज लाइ 4.5-37 अरब रुपया रखने की तजवीज 6 जदीद गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन ए सॉलिड वेस्ट मनसूबन लाइ भी रकम रखी वही केपुर पानी मनसूबे ए वाटर सप्लाई निजाम की तोसी वारा मनसूबा भी जारी रहंदा मलीर एक्सप्रेस वे नवा इंटरचेंज ए राबता रकम वजीर माद अली शाह बजट तकरीर कंदे सिंध हुकूमत कराची के मेगा मनसूबन से खास ध्यान दई रही है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331258 6।
3: जी हा, 3315525786।
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: माही यार करे

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

ਅਖੇ ਜੀ ਅਣੀ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਦੱਸੇ।

संग बंधु गद्दु नाली जप नंद का नुकमान मिसाली जमा गजबान झंझी जोर लड़ी जमा गजबान झंझी जोर लड़ी इहो सारो सामान संगे सार करण जो हा आयो से नंदो या हथे यार घणी जंगे

0: कैद कमंदा में गिरफ्तारा तुझे होशे नहणी कया हजार पणी तुझे होशे नहणी कया हजार पणी तोखे केड़ो वा दलील तोखे केड़ो वा दलील मने थार मरण जो होशे नंदो यार हथे यार खन जंगे शौक वहे हिशकार तन जो आ
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
2: मोर को दिल्ली राणा मोर को
1: आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है सारे
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: अगर